0: हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 एफएम, आवाज तुमचा।
1: नमस्कार, मी अंजली भिडे, आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 एफएम, आवाज तुमचा।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420. My name is Anthony Gonzalez.
1: Really?
0: Right, right. My

0: वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस,
2: राइट,
1: मैं दुनिया

कैसे बंद बांधने कि फिर कोई बंद न हो। नौ तत्व में का एक प्रमुख तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व, जो भी आप है मैं हूं, वो बंध तत्व के कारण से आश्रय आया है लेकिन टीका नहीं है तो बंध नहीं होता है। मन में मंगल भाव आए हैं लेकिन टीके नहीं, टच एंड गो हो गए तो बंध नहीं होता है। और बंध में छोटी सी बात केवल आज आपके संबंध तत्व की, कितना गहरा बंध तत्व होता है। रोहिणीय चोर का भगवान महावीर के एक वाक्य का आश्रय हुआ है, सिंगल सेंटेंस का आश्रय हुआ है। एक वाक्य उसने सुना है, सुनना नहीं चाहता था लेकिन सुना गया, सुनने के पचकान थे लेकिन फिर भी सुना गया। और तीर्थंकर नामकर्म के वचनातिशय से संपन्न वाक्य सुना। अब उसको सुनना नहीं चाहता था, याद नहीं रखना चाहता था लेकिन वो याद हो गया, उसका बंध पड़ गया। जिस जो याद रह जाता है उसका बंध पड़ जाता है। बंध कोई श्रद्धापूर्वक नहीं पड़ा है, बंध कोई आस्थापूर्वक नहीं पड़ा है, बंध में कोई प्रेम नहीं था। बीज तो बोया गया लेकिन श्रद्धा से नहीं बोया गया, प्रेम से नहीं बोया गया। अनवांटेड डिसलाइक, उसके बावजूद भी बीज तो बोया गया। कुछ बीज ऐसे होते हैं तुम जिस भावना से बोते हो वैसे फलाते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं तुम किसी भावना से बोलो उसका फल बीज जैसा ही आता है। और तीर्थंकर के जो वचन होते हैं वो तुम्हें किसी भावना से सुनो उस पर तुम्हारी भावना का कोई असर नहीं होना है, उसका रिजल्ट आना है वो तीर्थंकर के नाम कर्म के अनुसार ही आना है। और तीर्थंकर का वचनातिशय यानी पूरा नमुत्थुनम की सामग्री वचनातिशय में, तीर्थंकर का एक एक वचन लोगों को तीर्थ बनाता है, मुक्त करता है, बुद्ध करता है, विजेता बनाता है। और रोहिणी चोर के अंदर वो बीज पड़ गया, इच्छा नहीं थी, पचकान थे लेकिन पड़ गया। और जो पड़ता है तीर्थंकर का बीज अंदर में वो फलित होता ही होता है। तीर्थंकर के दर्शन, तीर्थंकर के वचन, तीर्थंकर की आज्ञा, तीर्थंकर की भक्ति, ये बरगद का बीज है, ये पीपल का बीज है, ये बोने के बाद पनपता ही पनपता है, इसको पनपना ही पनपना है। और वो पनपा, और ऐसा पनपा कि अभय कुमार रोहिणी चोर को जाल में उलझाने के लिए गया लेकिन उस जाल में से, उस षड्यंत्र में से, अभय कुमार के षड्यंत्र से, अभय कुमार के चक्रव्यूह से एक वचन ने रोहिणी चोर को सुरक्षित बाहर निकाला। एक वचन ने, क्यों वचन फलित हो गया। अरे ये नाच रही है लेकिन इनके पांव जमीन पर है। और तीर्थंकर ने कहा कि देवता के पांव जमीन को छूते नहीं है। अरे इनकी पलकें झपक रही है
देवता के पलके झपकते नहीं है, और इनके फूल की मालाएं मुरझा रही है, देवता के फूल की मालाएं मुरझाते नहीं। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई प्रेरणा थी नहीं, विदाउट मोटिवेशन सेंटेंस, ओनली इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस, ओनली इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस, नो अफर्मेटिव, ओनली इन्फॉर्मेटिव, केवल इन्फॉर्मेशन थी उसमें। लेकिन तीर्थंकर का कोई भी वचन, चाहे वो इन्फॉर्मेशन का हो, चाहे मोटिवेशन का हो, चाहे आज्ञा का हो, चाहे निर्देश का हो, वो तुम्हें तीर्थ बनाता ही बनाता है। ये बंधा हो गया है, और मैं निश्चिंत हूं आपके लिए, मैं बहुत गहराई से निश्चिंत हूं आपके लिए, कि जिस गहराई से आप पृथ्वी का गान कर रहे हो, अर्थ पता भी नहीं होगा, लेकिन बंद हो रहा है। किसके साथ बंद हो रहा है? तीर्थंकर के साथ बंद हो रहा है। दो रास्ते होते हैं, एक तीर्थंकर के साथ बंद करके तीर्थंकर के वचन में पहुंचना, और एक तीर्थंकर के वचन के साथ बंद करके तीर्थंकर के पास पहुंचना। दोनों ही रास्ते खुले। चंदन बाला तीर्थंकर के से जुड़ करके तीर्थंकर के वचन में गई, और रोहिणी चोर वचन में बंद करके तीर्थंकर के पास पहुंचा। अनंत रास्ते हैं तीर्थंकर पास पहुंचने के, और ये बंद हो गया। आग्रह केवल इतना ही आपसे, आश्रय तो यहां हो रहा है, आश्रय तो यहां पर हो रहा है, लेकिन जो गाया, जो सुना, उसको दिन में अंदर में रवंत करते रहना, तो बंद गहरा हो जाएगा। जैसे किसी ने आपको गाली दी, वो बार बार आप याद करते हैं, तो उस गाली का बंद कैसा होता है? गहरा होता है। कुछ दुर्घटना घटी तो आप उसको बार बार याद करते हैं, और बंद गहरा होता है। ये गुनगुनाना चाहिए, और अगले 21 डेज 20 अक्टूबर से, अभी तो विरुद्ध ही चल रही है, संपुट में चल रही है, उसमें विरुद्ध ही चलेगी मस्ती में। मैं भी मस्ती में रहूंगा, तुमको भी मस्ती में ले जाऊंगा। अभी तो क्या, वो टाइम के साथ कुश्ती चलती है, लेकिन उस समय सिंगल काम है, नौकर मंत्र से शुरुआत करनी, 2 घंटे चलते रहना, वर्धमान सर नमा में पहुंचने के साथ समापन करके बाय बाय करना। उस समय जब पुच्छ सुनम का बंद हो जाएगा। मैं एक प्रसंग दे रहा हूं आपको, उस बंधन तत्व का, जैसे रोहिणी चोर का मैंने बताया आपको, ऐसे बहुत प्रसंग है। रायपेटा में उत्तराधीन के अनुष्ठान चल रहा था, चेन्नई में, और 8वें अध्याय की आराधना चल रही थी, और मैं आराधना कर करके चल पड़ा। मैंने शुरू से मेरे लिए रास्ता जो है अलग से बना रखा था कि किसी से मुलाकात नहीं हो, लेकिन उस अध्याय की आराधना के बाद एक बंदा मेरे वो सीक्रेट रास्ते पर जाकर के छिप गया, और जैसे मैं वहां पहुंचा तो जोर से पांव पकड़ ली, और मुझे मौन, और मैंने आपको पल 2 दिन पहले भी कहा कि मैं उस दिन उस समय किसी को बंदना लेता नहीं हूं, किसी को बंदना करता नहीं हूं। पांव पकड़े और रोने लग गया, और रोते रोते कहा, मैं अब बलगम में फंसी हुई मक्खी नहीं रहूंगा,
उस आराधना में एक वाक्य गया था, ये बैड हैबिट जो है, ये बैड सोबत जो है, वो कैसी है कि किसी के मुंह से निकला हुआ कफ बलगम, उस बलगम पर यदि कोई मक्खी बैठ जाए एक पल के लिए तो वापस उड़ नहीं सकती है, और किसी पर बैठी हुई मक्खी उड़ सकती है, शक्कर पर बैठी हुई मक्खी उड़ सकती है, लेकिन उसमें पड़ी हुई मक्खी उड़ने का प्रयास करती और उलझ करके वही मर जाती है। मैंने बस, और मुझे पता नहीं था, मैं उसको बहुत अच्छा समझता था, उसने कहा यहां से आगे शराब नहीं पीऊंगा, मुझे पता ही नहीं था वो शराब पी रहा है, आई डोंट नो। वो पिछले कई महीनों से मेरे साथ काम कर रहा था, मुझे पता ही नहीं। एक वचन पहुंच गया, बन जाओ तीर्थंकर परमात्मा के साथ। ये जो सारा प्रयास चल रहा है, इस प्रयास का केवल एक उद्देश्य है, हेलो, इस प्रयास का केवल एक उद्देश्य है कि तीर्थंकर के साथ बंध हो जाए, और वो बंध इतना गहरा हो जाए, इतना पावरफुल हो जाए। अगर मैं ऐसा कहते हैं कि जिनका तीर्थंकर के साथ का बंध गहरा और पावरफुल हो जाए, वो उसी जन्म में मोक्ष में चले जाते हैं। मैक्सिमम 3 जन्म करने पड़ते हैं, पर लेकिन बंध कितना गहरा होता है, इतना गहरा बंध होना चाहिए, इतना गहरा बंध होना चाहिए, इतना गहरा बंध होना चाहिए को

सिंह। आचार्य मान तुम कहते हैं कि परमात्मा आपके साथ जिसका बंद हो गया, आप जिसके जीवन में आप पूरे व्याप्त हो गए, वह पाप रहेगा कैसे? उसको जगह ही नहीं, रहने के लिए जगह तो चाहिए ना। और आपने मेरा पूरा जीवन व्याप्त कर लिया, आपने मेरा तन मन और चेतना पूरे व्याप्त कर ली, जगह ही नहीं बची, तो वे सारे दोष निकल गए बाहर। इतना गहरा बंद हो जाए। और आज की गाथा तो गजब की है।

जो ये प्रज्ञा की बात चल रही, पहले समीखपन ने, फिर भूईपन ने, और कल की आंसूपन ने, और आज की अक्षय प्रज्ञा, जिसमें कभी लीकेज नहीं होता, जिसमें कभी क्षीणता नहीं आती, जिसमें से कभी ह्रास नहीं होता है, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जिसमें से कभी मृत्यु नहीं होती, जिसमें से कभी क्षय नहीं होता है, ऐसी प्रज्ञा है। कई लोग कहते हमारे साहब पहले बुद्धि अच्छी मजबूत थी, याद कर तो हो जाता, तो अभी हुआ नहीं, क्या हो गया? प्रज्ञा क्षय हो गई। आचार्य भगवान की प्रज्ञा कैसी थी? अक्षय प्रज्ञा। 28 मार्च 92 को भी 25 साल पहले के पुट्ठे में कौन सी डायरी है, उस डायरी में कौन से पन्ने पर कौन सा भजन है, उनको याद है। अठे तो 25 घंटा पहले रो याद नहीं रहे भाई। अक्षय प्रज्ञा। और आज जब रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हैं तब उसका सीक्रेट खुलता है। अभी सारा मेडिकल साइंस कह रहा है यदि आपको बुढ़ापे में या जिंदगी में डिमनेशिया की बीमारी से बचना हो, विस्मरण के बीमारी से बचना हो, तो उसके जो स्किल, उसके जो उपाय बताए गए, कोई दवाई नहीं बताई, दवाई है नहीं उसके लिए, कोई एक ही उपाय बताया गया, रोज नया सीखते रहो, रोज नया याद करते रहो, नई स्किल लेते रहो, कुछ ना कुछ नया याद करते रहो। और जब ये साइंस वाले कह रहे हैं ना तो भी याद आता है, अरे गुरुदेव एक दिन भी ऐसा नहीं बिताते थे कि जिस दिन नया कुछ याद नहीं किया हो, नया कुछ सीखा नहीं हो। रोज नया याद करना ही करना है, चाहे संस्कृत का श्लोक याद करेंगे, चाहे अर्धमागधी गाथा याद करेंगे, चाहे दोहा याद करेंगे, चाहे इंग्लिश का याद करेंगे, कुछ ना कुछ नया याद करते ही करते रहे, कोई भजन याद करते रहे। जिस और ये नियम आज लगा लीजिए आप, रोज नया याद करना है। जिससे रोज खाना ये शरीर के लिए जरूरी है, वैसे दिमाग की खुराक क्या है? नॉलेज। नॉलेज इज ब्रेन डाइट। मस्तिष्क का डाइट क्या है? मोबाइल देखना, गप्पे मारना, रिपीटेशन करना, ये दिमाग का खुराक नहीं है, ये दिमाग की खुरकुर है। दिमाग की खुराक है रोज नया सीखना, रोज नया पढ़ना, और पूरा जीवन पट गुरुदेव का आंखों के सामने। गुरुदेव एक दिन चाहे विहार में हो, चाहे किसी काम में हो, चाहे सम्मेलन में हो, नया सीखना ही सीखना है, और सीखा हुआ दोहराना ही दोहराना है। इसलिए 92 की ईयर में भी उनकी बुद्धि नवजात बच्चे जैसी थी, फ्रेश, कि रोज झाड़ू लगा होता था ना, रोज झाड़ू लगा। अपना झाड़ू लगाने कितने दिन हो गए, कितना साल हो गया? हेलो, घर में झाड़ू बहुत बार लगाया, दिमाग में झाड़ू कितने बार लगाया? आपने दिमाग में झाड़ू लगाने को कितने साल हो गए? हाँ, और जहां झाड़ू नहीं लगता वहां मकड़ी के जाले हो जाते हैं, अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। दिल में झाड़ू नहीं लगाओ तो दिल में मकड़ी के जाले हो जाते हैं, रिश्ते में झाड़ू नहीं लगा तो रिश्ते में मकड़ी के जाले हो जाते हैं,
ऐसा ही है। लोहा काम में लिया तो धारदार रहता है और लोहा काम में नहीं लिया तो गंज लग जाता है। वैसे ही दिमाग है, इसको यूज करते रहे तो तेज होता है। और अभी इस पल मुझे, मैं पिछले 10 दिन से समय तो पराक्रम के एक शब्द पर अटका हुआ हूं, उसका उत्तर अभी मिला मुझे। क्या दे गुरु कृपा है। स्वसायनम भन्ते जीवे किम जनई, उसमें उस सायनम शब्द का अर्थ नहीं मिल रहा था कि जो उत्तर दिया गया वो उत्तर और किताब में लिया हुआ दिया हुआ अर्थ मैच नहीं करता था। और मैं इस कोश में देखो, उस कोश में देखो, इस किताब में देखो, उस किताब में देखो, अटका हुआ था मेरा काम। धन्य है गुरुदेव को से पन्ना या अख या साय रेवा। तीर्थंकर की प्रज्ञा अक्षय प्रज्ञा, व्यर्थ की एक एक गाथा थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के जानकारी दे रहा हूं आपको। अभी तो अरम गर्भ संस्कार का फुल पैकेज बन गया कार्यक्रम का, ये कर वो कर, ये कर इसके लिए वो कर वो कर। लेकिन फर्स्ट टाइम जिस समय मैंने अरम गर्भ संस्कार का कार्यक्रम शुरू किया था वो केवल विरुद्ध के आधार पर शुरू किया था। किसके आधार पर? केवल विरुद्ध, ओनली वन विरुद्ध के आधार पर कार्यक्रम शुरू किया था। पहला जो 3 दिन का शिविर मैंने इंदौर में लिया था 96 में, ना उस समय नमोथनम का पाठ था, ना ये ध्यान के कारण थे, ना स्वस्तिक था, ना श्रीवत्स था, केवल विरुद्ध हुई थी। अब तो वे बच्चे विरथी वाले बच्चे जिनको विरथी के प्रयोग दिए थे जिनके माताओं को, वो तो डॉक्टर हो गए और मिलते कभी मिलते। एक एक गाथा इतनी पावरफुल है। से पन्न या आख या सायर एवं महो दही वाम अनंत परे कैसी अक्षय प्रज्ञा। मोह दही वाम अनंत परे, जिसका कोई पार नहीं है। मोहदधि अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं, आपके लिए सब एक ही है। समुद्र के लो, सागर के लो, है ना, ओशन के लो, आपके लिए सारे एक ही है। सुधर्मा स्वामी के लिए सारे शब्द अलग है। मोहदधि जिसमें श्रेष्ठतम पानी है, महापानी मोहदधि। से पन्नया आख या साय रेवा, पहले सागर कह दिया फिर महोदधि कह दिया, क्या दिमाग में आएगा अपने दिमाग में क्या आएगा? अरे अब बार तो सागर की हो और अभी लगे वापस महोदधि के, एक बात ने कहने के लिए दो शब्द की कई जरूरत। पर बोलने वाला कौन है? सुधर्मा स्वामी। अपने समझ में नहीं आयो तो अपन अपना अकल ने ठिकाना माते रखो ना। से पन्न या अख या साय रेवा, उनका सागर, उसको सागर उसको कहते हैं कि जिसमें बहुत हलचल होती रहती। समुद्र कभी शांत होता नहीं, बिल्कुल तरंगे तरंगे तरंगे चलती रहती है। महोदधि उसको कहते हैं कि जिसमें पानी असीम पानी हो, सागर की गूंज होती है और समुद्र का महोदधि का पानी होता है। से पन्न या अख या साय रेवा महोदही वा भी अनंत पारे, जिसका कोई पार नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, आखिरी छोर हाथ में आता ही नहीं। जैसे जैसे विरुद्ध का अवगाहन करते हैं, प्रभु बाने का अवगाहन करते हैं, लगता रे और आगे और आगे और आगे। जैसे क्षितिज की यात्रा करते चले जाओ ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे क्षितिज आगे बढ़ता, ऊंचे जाओ तो भी आगे बढ़ता है। वैसे प्रभु का ही प्रज्ञा आगे बढ़ती, ऐसा लगता है हाँ
तीर्थंकर महावीर ने ऐसा कहा होगा, लेकिन दूसरी बार बैठते अरे नहीं ये भी कहा होगा। आज सुबह की क्लास की एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको, आज मास्टर ट्रेनर का ये जिसका क्लास था 4 बजे, और क्या कृपा बरसती गुरुदेव की। बंध किसको कहते हैं, कर्म बंध किसको कहते हैं, गर्भ को कहते हैं। कई अर्थ कहो उसको, सुबह बताया मैंने थोड़ा सा ना? बंद है क्या है, गर्भ है ना क्या, बंद है। और जिसका बंद हुआ, जिसका गर्भ हुआ उसका जन्म हो गया, तो जिस कर्म का उदय हो गया उसका जन्म हो गया। जब तक वो चला तब तक उसकी लाइफ चली, जिस दिन वो मर गया उस दिन वो कर्म समाप्त हो गया। और अपने अंदर अनंत बंध है, अनंत गर्भ है। अब किस गर्भ को जन्म देना है ना, किस पॉसिबिलिटी को जन्म देना, ये ऐसा चलता मामला है। ये अनंत प्रज्ञा है किसकी। और अपना सौभाग्य है कि उनके सागर में, उनके अक्षय सागर में स्नान करने का मौका मिल रहा है, नहीं तो कहां पता नहीं किस गंदे नाले में डुबकी लगाते रहते हैं। डुबकी तो लगाएंगे है ना, डुबकी तो लगाएंगे, लेकिन सौभाग्य हमारा कि हमें परमात्मा के अक्षय सागर में डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है। और निश्चित रूप से इस सागर में डुबकी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ठंडक तो अंदर पुगीला पुगीला, कुछ भी कर लो आप है ना, खारे जल में डुबकी लगाओगे, पानी नहीं पियोगे तो भी कल्याण तो हो ही जाएगा ना? और दूध के सागर में डुबकी लगाओगे, भले उपास में लगा लो तो भी स्किन तो कोमल हो ही जाएगी। और परमात्मा के अमृत सागर में डुबकी लगाएंगे, भले ही नहीं पिए, पिया नहीं है, लेकिन डुबकी लगा रहे, डुबकी भी लगाएंगे अक्षय सागर में। बहुत अधिक है।

मुख के दो है, भिक्षु शब्द भी जाता है, मुख के शब्द भी जाता है। अनाइली का मीनिंग क्या है? अकशाई, एक भी समुद्र नहीं है कि जिसमें तूफान नहीं आता, ज्वार भाटा तो आना ही आना है। और ज्वार भाटा कहते व्याकुल हो गया हो, समुद्र क्या हो गया? व्याकुल हो गया। लेकिन परमात्मा की प्रज्ञा का सागर कैसा है? अनाकुल, न ज्वार है न भाटा है, कोई तूफान आते ही नहीं। आपने तो चाय के प्याली में दिन में 24 बार तो तूफान, हेलो है तो चाय को प्यालो, ना भी तो प्यालो भी छोटो हो गया। वो बाहर जिस कप में चाय मिलती है ना, उतनी चाय यदि पहले कोई मेहमान को देता तो फेंक देता उसको तो। अपने कप भी छोटे, लेकिन छोटे कप में तूफान बहुत आ रहे हैं। और परमात्मा का कैसा है? अनाइले, उसमें कोई तूफान आता ही नहीं। चाहे गोशालक आ जाए, चाहे इंद्रभूति गौतम आ जाए, चाहे जमाली उद्योग कर ले, चाहे नंदीसेन उद्योग कर ले, कोई भी उद्योग कर ले, उनमें तूफान आता ही नहीं। और अपने में तूफान आए बिना वाह मस्त, अच्छा बोलो थे ना, अच्छा बोलो थे। अनाइले वाह अकसाई, नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है, उसमें कोई करेला है ही नहीं, है ना? क्यों ना थे वो पित्तल ना बर्तन में रखे हो तो कई हो जावे, कशाइलो हो जावे, है ना? कलाई नहीं कर रही तो कही जावे, कशाइलो हो जावे। और कशाइलो गए मतलब कही पॉइजन, कशाइला मतलब पॉइजन, उसमें पॉइजन है ही नहीं। जो अनाकुल हो गया ना, जिसमें कोई कषाय नहीं रह गया। और सुधर्मा स्वामी, अब ये तो जाना पड़ेगा सुधर्मा स्वामी के पास पूछने के लिए कि कौन सा शब्द किया आपने, मुख्य किया कि भिक्कू किया? अब परंपरा में दोनों ही शब्द आते हैं, भिक्कू भी आते हैं, मुख्य भी आते हैं। लेकिन यदि भिक्कू शब्द दिया होगा भगवान महावीर के लिए तो बहुत गहरा शब्द दिया। सुधर्मा स्वामी ने यदि परमात्मा के लिए भिक्षु शब्द का प्रयोग किया हो तो बहुत गजब का प्रयोग किया। मुख्य शब्द का प्रयोग किया तो नॉर्मल है। अनाकुल हो गया, कषाय से मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया, मुख्य ने मुक्त हो गया। लेकिन भिक्षु शब्द का प्रयोग किया होगा तो बहुत गहरा शब्द प्रयोग किया है। और उस पर चिंतन कर सकते हैं आप, भगवान किसकी भिक्षा ले रहे होंगे? जो भिक्षु कहां गया उनको? केवल ज्ञान होने के बाद किस लिए घूम रहे थे? क्या पर्पज, क्या उद्देश्य? वाय, और कैसा भिक्षु, कैसा भिक्षु, कैसा भिक्षु, कैसा भिक्षु कि गोशालक ने तेजोलेशा छोड़ी और खून के दस्ते शुरू हो गए तो लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि अब तीर्थंकर महावीर 6 महीने के बाद जैसा गोशालक ने कहा चले जाएंगे। और सुना रोहा अनगार ने वो उधर बगीचे में ध्यान कर रहा था और उसके कानों पर गए कि भगवान को खून के दस्ते लग रही है, वही रोने लग गया, वही रोने लग गया। भगवान ने उसको बुलाने भेजा, संतों को भेजा के उसको बुला के ले आओ, और वहां रो रहा है उसको ले आओ। लेकर आए और उसको कहा तू रो मत, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी भी अगले और 16 साल रहूंगा, तू रो मत। पर वो सामने खून के दस्ते, भगवान परेशान नहीं थे खून के दस्ते से, परेशान कौन था? रो अंदर। बोले तुझे खून के दस्ते की चिंता हो रही क्या? जा उस रेवती सर के घर पर जा,
उसने बीज और अपांग बना के रखा हुआ है, दो प्रकार के बना के रखे, उसमें से एक लेकर आ जा। गया और कहा क्यों बीज और अपांग, वो जो बना वो मत देना, ये देना। वो पूछती है तुमको कैसे पता? बोले मुझे तीर्थंकर महावीर ने भेजने के पहले कह दिया और लेकर आया, और परमात्मा ने उसको निगल लिया, खून के दस्ते बंद हो गई। धन्य हुई ये स्वामी का, कल्याण हो गया उसका। ऐसा भिक्षु, ऐसा भिक्षु, ऐसा भिक्षु कि जिसको देने वाला भगवान हो जाता है, किसको कहते हैं भिक्षु? कि वो जहां से भिक्षा ले वहां देवता खुशी मनाए। जहां जहां साधना काल में परमात्मा ने पारणा किया वहां देवताओं ने खुशी मनाई, वर्षा करी। ऐसे अनूठे भिक्षु बन जाओ यार, मजा जाए कि तुम्हें कोई दे करके धन्य हो जाए। अभी तो हालत ऐसी है, लेवन वालों धन्य हुए, देवन वालों उपकारी हुए। हेलो, स्थिति क्या है? लेने वाला हाँ घना उपकार कर जाते, सहयोग दिए मैंने। प्रभा देने वाला कहता है कि प्रभु मैं धन्य हो गया कि आपने मेरे हाथ से कुछ लिया, मुझे यह अवसर मिला। भिक्षु होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि देने वाले को लगे कि इन्होंने लिया, इन्हें मेरा सौभाग्य है। मिलने वाले का सौभाग्य नहीं, देने वाले का सौभाग्य। और किसको देकर के धन्यता का अनुभव होगा? आपकी भाषा में बोलो, जो नहीं मिला तो भी परेशान नहीं होता है, और मिला तो भी उसको गुणगान नहीं गाता है। अते घना अच्छा मेरा ये वो थकात्र घना अच्छा लागे नथिंग। केवल आहार की बात नहीं, सहयोग की बात है। देने वाले को धन्यता का एहसास हो जाए, ऐसे भिक्षु बनो। तुम्हें सहयोग करके सामने वाले को गौरव की अनुभूति हो जाए, ऐसे बनो। कोई तुम्हें मदद कर करके, सहयोग दे करके, तुम्हारे लिए उपयोग में आकर के स्वयं को भाग्यशाली समझे, ऐसे बनो। अनाइले कसाई बिको सके व देवाए वही जो इमम। अब इतने देर तक सागर की बात कर रहे थे, आप सीधे चले गए उस शक्रेंद्र के पास। सके वो देवाई वही जो इमम, बोले जैसे देवाधिपति की द्युति है, चमक है, तेज है, ओज है, ग्लो है। किसकी? देवों के राजा इंद्र की, शक्रेंद्र की। उसका जैसा ग्लो है, उसकी जैसी द्युति है, वैसे तीर्थंकर परमात्मा आपके प्रज्ञा में वो चमक है। एक पल के लिए कल्पना करो ना ऐसे सागर की, जो ज्योतिर्मय सागर हो। कैसा सागर? हाँ, प्रकाशमय सागर। तो परमात्मा की प्रज्ञा पानी भी है और प्रकाश भी है। आप कर सकते हो, आप अपने बच्चों को कह सकते हो। मैं जल्दी पहली बार बोल रहा हूं, माफ करना, पहले कभी बोला नहीं है। इधर उधर के सरस्वती मंत्रों की आराधना करते हो, ये मेरा बाबा भी मुझे एक दिन कहने लगा। कि वो लोग सरस्वती का पाठ कराते हैं, सरस्वती की आराधना कराते हैं, सरस्वती की पूजा कराते हैं। अपन भी कहीं शुरू करा। हाँ, 2021 में उसको याद है, कब बोल रहा था मुझे। मैंने कहा भैया मुझे आगम में तो कोई सरस्वती देवी दिखी नहीं, और जो आगम में दिखती नहीं वो मेरे मन में आती नहीं है। निवेक करे ना पीछे वो सगड़ा अच्छो में नहीं, लेकिन यदि है अपने लिए कोई श्रुत देवता, कोई सरस्वती है, तो कौन है?
तीर्थंकर का वचन आदेश है और तीर्थंकर और उसकी ये गाथा

0: कराओ बच्चों के इस गाथा का पाठ, गिनाओ उसकी माला, कहो उसको करो मेरे परमात्मा का ध्यान, जुड़े तीर्थंकर परमात्मा के अनंत ज्ञान के साथ, और जिसके साथ जुड़ोगे उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। जिसके साथ जुड़ोगे, भोगी के साथ जुड़ोगे तो भोग की प्रॉपर्टी मिलेगी, राजनेता के साथ जुड़ोगे तो तुम्हें शकुनी की प्रॉपर्टी मिलेगी, किसी योगी के साथ जुड़ोगे तो योग की प्रॉपर्टी मिलेगी, तीर्थंकर के साथ जुड़ोगे तो तीर्थंकर की प्रॉपर्टी मिलेगी। किरासते रिश्तों जोड़नो यो तय कर लो चीज, जिरा साथे रिश्तों जोड़ा ला उसो साइडा। कुछ लोगों ने रिश्ते ऐसे लोगों के साथ जोड़ लिए है कि उनको रास्ता ही नहीं दिखता, क्या करेंगे आप? तुम लोगों ने गुरुदेव के साथ रिश्ता जोड़ा है तो तुम्हें रिश्ता रास्ता दिख रहा है, भाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे कर्म पुण्यशाली है, ध्यान में रखना। मैं तुम्हें पुण्यशाली इसलिए नहीं कहता हूं कि तुमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया है, तुम्हें पुण्यशाली के लिए इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे दिल में गुरुदेव विराजे हुए हैं, तुम्हारे दिल में तीर्थंकर की प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए पुण्यशाली हो। चंड कौशिक भी पुण्यशाली हो जाता है जिसके दिल में तीर्थंकर की स्थापना हो जाती है, धन्य हो जाते हैं वो लोग। ऐसे ही अंदर के तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करता हुआ वीरत्वी का गान आज मुत्था और गांधी परिवार, अभिनंदन आपका। खड़े रह सकते हो, अच्छे लगते हैं, सारे जवान दिख रहे हैं आज।
1: जवान है सर।
0: भैया थोड़ा सा आवाज को इफेक्ट देगा क्या तो, है ना? मुझे ये वाला सागल नहीं लगा भैया ना, थोड़ा सा कर भैया। नहीं बराबर है, तो भारत समझता है। ये सारे जवान लोग जब देखता हो ना तो लगता है कब जिन शासन में आएंगे, कब जिन शासन जयवंत होगा। हेलो, और भिक्खु स्मृति के एक याद कहता हूं जो मैंने आज तक कभी नहीं कही है। गर्मी के दिन थे और गुरुदेव को पानी नहीं बा रहा था। हम दोनों तीनों संत वहीं पर, गुरुदेव मैंने पानी भावे को नहीं बने, और गर्मी के दिन और गुरुदेव पानी नहीं पिए, क्या करें? वैसे ओगा उठाया, झूली पात्री ली और भिक्खु स्मृति पहुंचा। आज भी याद है सारा कुछ, और माता जी का थोड़ा नींबू के आचार का रस दे दो, थोड़ी शक्कर, थोड़ी इलायची की पाउडर, जो सुस्ता था वो लेकर के आया, और उसको पानी का शरबत बना करके गुरुदेव को दिया।

यादें, कि उस समय सबसे नजीक घर कोई था ना, अभी तो बहुत घर नजीक। जयानंद आनंद गाओ चला जया, गुरु दरबारे आनंद घेऊ चला गुरु, काहो आनंद आनंद धुन लावली।

जयानंद आनंद गाओ चला जया। आचार्य भगवान भजसी आनंद श्री जी महाराज साहब के अंग

और खरगस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, चीज जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, चीज जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।